0: GR125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
0: बर्जर फेन्स।
2: गुड मर्निङ पोखरा।
3: तपाईको दिन शुभ रहोस्। शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रट यू बाई बर्जर रङबहार
1: उपहारै उपहार
0: लकी ड्र बम्परमा यामाहा रेजियर बर्जर फेन्स।

0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-06-11।
1: बाजे देखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला पूर्वाह्नको 11 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
6: नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं तथा दीपावलीको पावन अवसरमा हामी हाम्रा समस्त श्रोताहरू, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, विज्ञापन दाताहरूमा सुख शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

0: Pareto Kie Nagari Pokrama Metro City Hospital Prali Sirjanasok Pokrali Bibhinna Kisimka Bisheshagya Chikitsak Sewaharuko Upachar Lyaeko Jankari Garaudachhau
1: Hamra Sewaharu
0: Heart Jodne Nasa Tatha Merudanda Rog
1: General Surgery Sabai Prakarka Operation Sewa
0: Mirgaula Tatha Mutra Rog Uro Surgery
1: Pet Chhati Mutu Thyroid Tatha Madhumeha Rog
0: Neuro Surgery Sewa
1: Bal Rog
0: Nak Kan Tatha Ghati Rog
1: Manasik Tatha Snayu Rog
0: Prasuti Tatha स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दांत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इकोकार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी EEG, PTA,
1: Physiotherapy, Uroflowmetry,
0: Chemotherapy,
1: Surakshit Garbhavatan Sewa,
0: Whole Body Checkup Health Package,
1: Metro City Hospital Prali, Pokhara R. Srijanachok Kas.

0: कानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: सर्वाधिक बिक्री होने ह्युंडई गाड़ी को शोरूम पोखरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स सभी को सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागी एलआई मोटर्स बुद्ध चौक पोखरा फोन नंबर 0165274235

0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-06-11।
1: ओहो नासर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाटी दुकान महेंद्र पुलाडी तोला
1: ए नई छाबा मारे दुकान पो मोना नई प्रेसलाई नी चाबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो होनी जगह मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिस्या वा चुवल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखे चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगह मात्र आंगी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रवा ता क्रिबा जाला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल ती विषया रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाकोट।

0: दिव्य नयन आँखा घर क्लिनिक प्राली
1: इस 2083 साल को बड़ा दशैं तथा दीपावली को पावन अवसर में दिव्य नयन आँखा घर को असोज र कार्तिक दुई महीना भरी बम्पर अफर टिकट में 50% छूट चश्मा फ्रेम में 25% छूट र आँखा परीक्षण तथा शल्यक्रिया में 30% छूट
0: नेपाल को तिलगंगा आँखा अस्पताल र अमेरिका को मोराइन आई सेंटर बाट प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव प्राप्त गरी 16 वर्ष को कार्यावधि में 80,000 बड़ी बिरामी को मोती बिंदु को शल्यक्रिया गरी सकेका वरिष्ठ फेको सर्जन तथा कोर्निया कंसल्टेन्ट डाक्टर अनिल गुरुङ द्वारा अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी उपचार गरिने जानकारी गराउँदछौ
1: हाम्रा सेवाहरू कोर्निया सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार का साथ ही कोर्निया प्रत्यारोपण आँखा को लेजर सर्जरी सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श दृष्टि विशेषज्ञ द्वारा बाल बालिका को चश्मा जाँच तथा भिजन थेरापी जल बिन्दु र आँखा को पर्दा सम्बन्धी जाँच उपचार फेको मेसिन द्वारा बिना सुई मोतिया बिन्दु को शल्यक्रिया र आँखा में मासु पलाएको शल्यक्रिया क्लिनिक समय आइतबार देखि शुक्रवार बिहान 9 बजे साँझ 6 बजे सम्म स्थान न्यू रोड भादवटनी पारी एभरेस्ट बैंक नजिक फोन 577-007 97-623-36-816
2: घरको स्टार हिमस्टार यो दशैं तिहार आफ्नो घरलाई हिमस्टारको प्रोडक्टले सजाउनुहोस् र साथमा अफरहरूको फाइदा उठाउनुहोस् अब प्रोडक्ट खरिदमा पाउनुहुनेछ 30% सम्मको क्याशब्याक 0% ईएमआई र एक्सचेन्जको सुविधा शर्तहरू लागू हुनेछन् घरको हाँसो परिवारको रमाइलो हरेक खुसीमा साथ होस्को For a complete home.
3: Ayani, mero daant dukhera hairan bhayeko chu. Tesaima chhora chhori ko pani testai chha. Kaha gaera upachar garauni hola?
4: Haina, kina chinta liyeko? Testai daant ko dukhai bhaye, anya samasya bhaye pani Harichok pokhara ma raheko Chino Pharmacy tatha Signing Health and Dental Clinic ma anubhavi visheshagya haru bata adhunik upakaran sahit ko upachar sewa uplabdha raheko chha ta. Tyahi gaera dekhau na.
3: E, ho ra? अनि त्यहाँ के सेवा उपलब्ध रहेछ नि
4: ल सुन डेन्टल सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार जस्तै नयाँ दाँत बनाउने मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने दाँत निकाल्ने खोल राख्ने फिक्स दाँत राख्ने नमिलेको दाँत मिलाउने जरैबाट दाँतको उपचार

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो।
1: घर होस या ऑफिस, होटल होस या रेस्टोरेंट, छिटो र भरपर्दो इंटरनेट सेवा पोखरा इंटरनेट, पोखरा को ब्रांड 25 वर्ष को विश्वास गति सहपार 1 GBPS सम्म का पैकेज को बहार स्ट्रीमिंग गेमिंग काम होस् या रमाइलो जहाँ सुके जाऊ कनेक्शन में कुने गड़बड़ी छैन ढिलो पोखरा इंटरनेट सधैं तपाईको साथमा हिजो आज भोलि हामी छौ तपाईको बाटोमा छिटो भरपर्दो सुलभ र सहज पोखरा इंटरनेट तपाईको पहिलो रोजाई।

Royal Metal Industries को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल SS5 नेपाल्स नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखी सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: एक बाम तीन काम ठंडू बाम
1: अब ठंडू बाम रेगुलर र अल्ट्रा बजार में उपलब्ध छ।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो कॉफी रेडी।
1: वाव थैंक यू यू सांस लाइक अच्छे सुगंधित बनाऊ छु मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
0: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो कॉफी रेडी
1: वाव थैंक यू यू साउंड लाइक अच्छे सुगंधित बनाउछु मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ
2: आई लव द सेंट
1: आई लव इट टू हामीले मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ
2: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस